0: गोरे गोरे मुखड़े ते काला काला दिल सी, काले काले दिल ने चुराया मेरा दिल सी वे। गोरे गोरे मुखड़े
1: ते हंस राज हंस। बहुत सारे गाने जिन्होंने गाए सूफियाना कलाम, हर तरह के गीत, धार्मिक गीत भी गाए, शिव भी गाया, छोटे जे पिंड च उठ के पद्म श्री अवार्ड भी लिया। वो है एक नाम हंसराज हंस।

ऐसी कुछ गाने गाए हुए पद्म श्री हंसराज हंस की आवाज विच। समा इस वेले 8:57 हो गए ने। तो सुन रहे अपना मन पाँगा पंजाबी गीतों का प्रोग्राम मेला गीतों का सवार 99.9 FM तो श्याम कुमार के नाल। हफ्ताबारी प्रोग्राम हर एतवार सवेरे 8 बजे तो लैके 10 बजे तक सवार 99.9 FM की फ्रीकुएंसी तो सिडनी तो पेश किया जाता। तो सिडनी टाइम 8 बजे तो लैके 10 बजे तक दुनिया के किसी कोने च बैठ के सुनते हैं तो सिडनी टाइम के हिसाब न मिला के www.swr999.com.au उत्ते सुन सकते हो। चलो 2 मिनट की प्रोमो सुनते हैं, उस तो बाद फिर प्रोमो लैके हाजिर।